इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नित्य धर्म श्री जय वैभव। अध्याय 18 समाप्त। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट।
2: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हमारी ऊर्जा बहुत कीमती है। हम दिन भर में जो बातें करते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं और जिन विचारों में डूबे रहते हैं, वे सब मिलकर हमारी चेतना का स्तर तय करते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी ऊर्जा उन चर्चाओं में गवा देते हैं जिनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। जैसे धन की बातें, ईर्ष्या की बातें या संसार के छोटे छोटे प्रपंच। हम असीम आकाश के पंछी होकर भी पिंजरे की सीमाओं में जीने वाले लोगों से गहरा नाता जोड़ लेते हैं। कबीर साहब आज हमें संगति का और अपनी भीतरी ऊर्जा को सहेजने का एक बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा के कपाट किसके सामने खोलने हैं और कहाँ मौन साध लेना है, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र। कबीर हद के जीव सु हित करी मुखा न बोली। कबीर हद के जीव सु हित करी मुखा न बोली। जे लागे बेहद सु तिन तू अंतरी खोली। कबीर हद के जीव सु हित करी मुखान बोली।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत सीधा सरल है, जिसके पास कोई भारी सामान नहीं है, वह बिल्कुल हल्का है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने सोने चांदी के भारी गहने पहन रखे हैं और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भारी भारी सामान की पेटियां भी अपने साथ लाद रखी हैं। अब अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ जाता है और नाव डगमगाने लगती हैं। आप बताइए, उस तूफान में किसके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से जो हल्का है, वह आसानी से तैर कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसने भारी बोझ लाद रखा है, वह उस बोझ के वजन से पानी की गहराई तक डूब जाएगा। हम सब भी आज इसी जीवन रूपी नदी में अहंकार और झूठी शान का ऐसा ही एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी वजन को उतार फेंकने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हम इस संसार सागर में डूबने से बच सकें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काली। कबीर, केवल राम कही सुध गरीबी झाली,

भारी पड़सी काली रे साधु, भारी पड़सी काली। श्रोताओं, कबीर साहब हमें जीवन की परम कला सिखाते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम कहीं तू संसार के सारे प्रपंचों और व्यर्थ के विवादों को छोड़कर एक नाम अर्थात राम का नाम सुमिरन कर, उस भीतरी परमात्मा से नाता शुद्ध गरीबी छाली और अपने शुद्ध गरीबी यानी सहज सरलता, निरहंकारिता और निष्कपट भाव को छाली यानी धारण कर ले। यहाँ गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, बल्कि मन का भोलापन और विनम्रता है, जहाँ कोई चालाकी और अहंकार नहीं होता। कबीर इसके विपरीत चलने वालों को चेतावनी देते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी, यह जो तुम संसार की कूड़ यानी झूठी और नकली बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा का चोगा पहनकर घूम रहे हो, यह तुम्हें एक दिन बुरी तरह ले डूबेगी। भारी पड़सी काली, और जब काली यानी मृत्यु का समय आएगा, काल का थपेड़ा लगेगा, तब इस झूठे बड़प्पन का वजन तुम्हारी आत्मा पर इतना भारी पड़ेगा कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, बल्कि जन्म मरण के इसी चक्रव्यूह में डूब जाओगे। यह दोहा अकिंचन भाव यानी पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाने की साधना का दिग्दर्शन करता है। अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा संसार में कुछ होने का भ्रम है, चाहे वह धन का अहंकार हो, जाति का हो या ज्ञान का हो। कबीर इस झूठे बड़प्पन को कूड़ यानी असत्य कहते हैं। जब मनुष्य इस असत्य को ओढ़ लेता है तो उसकी चेतना बहुत भारी और संकीर्ण हो जाती है। इसके विपरीत शुद्ध गरीबी आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है, जहाँ जीव स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तभी राम नाम का रस भीतर ठहर पाता है। कबीर समझा रहे हैं कि काल के थपेड़े केवल उसी को डुबा सकते हैं जिसके भीतर अहंकार का वजन है। जो पहले से ही हल्का है और विसर्जित है, वह इस भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम अपने कंधों पर किस बड़प्पन का बोझ लेकर घूम रहे हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो झूठे मुखौटे लगाते हैं, क्या वे हमारे भीतरी सुकून को नष्ट नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, काल की कसौटी पर केवल वही टिक पाएगा जो भीतर से बिल्कुल हल्का और साफ है। आज कोशिश कीजिए इस कुल बड़ाई यानी झूठी प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ने की। सीधे बनिए, सरल बनिए और अपने भीतर उस शुद्ध गरीबी यानी विनम्रता के भाव को जगाइए। अपनी चेतना को उस राम के सुमिरन में लीन कर दीजिए, जो आपको संसार के सारे बंधनों से आजाद करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।